0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नु हसा हसा के लोटपोट कीता।
4: की कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: की कह रहे हो?
5: किप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
6: पर टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर होंगे लाफ्टर द स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर द फेस्टिवल है।

कल ही सविता अज कहता मैं एदे च कुड़ी भी है जड़ी यार जाली डिग्री फॉर समथिंग समथिंग एक उहदे तो पॉपुलर हुई सी जैसमिन जैसमिन बाजवा वो भी हैगी है ते गाना देख के पता लगता भी किड्डी अच्छा गिप्पी गरेवाल का फरजंद भी है ते हुण कुछ क पंजाबी गाने जड़े लेटेस्ट आए हैगे ने वो भी तुहानू छड़दे हुए चली है जी ते फिर तुहानू एक इम्तियाज अली होरां दी एक इंटरव्यू भी सुनानी हैगी है बैक टू बैक कुछ लेटेस्ट गाने भी तुहाडे तक छड़ के जाने पहला सुनंदा शर्मा का गाना सुन लो जोगी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
6: हां जी रेडियो।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजुर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au सोना चाहिदा
0: भरोसा चाहिदा
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
3: हाँ जी हाँ जी

मेरे हानिया मेरे दोस्ता मैनू जानदे वेख ली सारी उम्र ना खड़िया नाल मेरे मेरा सेवा तां सेख लई।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
2: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
1: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी वी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535
3: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
2: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
1: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535
3: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: बेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
0: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते। 0433-280-2522 ते।

0: ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
2: सूरज देवता
1: की मतलब
2: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
1: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
4: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
4: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
5: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
6: हाँ जी रेडियो
7: 1 2

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडेनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां इक मूवी दा नाम हमेशा आउंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
4: की कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: की कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया,
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तुहाडे नाल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 04332802552 ते 04332802552 ते। की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे ही कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 04900545596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू ढिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
5: पर ढिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
6: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
2: टेंशन निरी टेंशन
3: की हुआ
2: इत्थे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
3: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवा इमीग्रेशन नु जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 9077973
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तो आड़े नाल
4: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने
5: सूरज देवता
4: की मतलब
5: ओ कमलिए सन करंट वालिया तो जदा इन्हों ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हों दी सेविंग्स वध गई
4: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
5: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 0 499-2535-45।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा।
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षों के तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
2: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
1: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
3: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: के दर्द दा।
1: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
0: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922।
1: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तो आड़े नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: हाँ जी।

ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगने ना विच।

0: ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria apply. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
1: सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने
2: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
3: सूरज देवता
2: की मतलब
3: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
2: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
4: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
4: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492
5: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
6: हां जी रेडियो

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नी
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुण टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओह वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11 हाल।
3: हाँ जी,

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसीं भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 04-91-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आडे नाल
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रे।

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सच्यार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नान गाविए गुनी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हासो कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सुपावा बिन पाने के नाए करी जेती सृष्ट उफाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त रै नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तर तवल आकाश सुनै दीप लोप पाताल सुनै पो न सके काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर ब्रह्मा इंद सुनै मुख सलाहन मंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ का इस

जाने मन कोई, मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोचो टाने खा, मन्नै जाम कै साथ न जाए, ऐसा नाम न

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगे मान पंचे।

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिनसूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी

एक बार जो तुद पावे साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान।

पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखिया लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वेखन सुन।

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोय, बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मा

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए। ओ जाने

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाए, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल प्रमाण, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाय, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्यान, आखे ब्रह्मे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सोर नार मुन जन सेव, केते आखे आखन पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे ता आख न सके के जेवड पावे तेवड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगान, तां लिखी है सिर गवारां गवार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वै सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे, केते राग पुरी सो कहियन, केते गावन हारे, गावे तुनु पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न ईश्वर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावे रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सही तुनु गावे जो तुत पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया, जिन उपाई कर कर वेख है कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाह सहा पत साहेब, नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करो बभूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भूत ज्ञान दया पंडारन, कट कट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरा साध, संजोग वंजोग दोय कार चलावे, लेखे आवे पाग, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावे

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेख है सिर जनहार, नानक सत्य की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद मनोद कोट आनंद, शर्मखंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदां की सुध।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्रीमुख वाग पाद सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जात हर पात नैंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तं इश्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विर्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघ उघ हर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोक्षपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयारं अछेति अपेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्तस्तताम तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहसाय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो सर्वतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वमंजंत्रं नमो सर्वदिशं नमो सर्वोत्कृष्टं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं पनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान देव अभेद आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद शेख देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिर पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपे सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवि उचित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ।

कालान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदिष्टे तर्म सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगंज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदाम गनी बुल शिकस्ते गरी बुल पलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वास स्वरूप है अगाध है अनु

सदैव सदा है, बेभुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है। निरकत सदा है, बेभुगत परवाह है, अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है। चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अभेक है, अलेख है, अभर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनाश है, उदास है, अधंध है, अभंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, अनचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अभेक है, अडा है, अगा है, असंभ है, अभंग है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजात है, चारपट चंतो प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रुआल चंद तो प्रसाद, नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे, अनंग स्वरूपे अभंगम भूते, परमात्म परमाते सदा सर्वसाते, अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते, निर्साक शरीक है, अमितो अमेक है, सदैव परवा है, अजय है, अजा है, भागवती छंद तो प्रसाद, के जाहिर जहूर है, के हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसमें चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सर्वल गवन है, के हमेशल रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अदीश है, परंग परंग ईस है, समस्त अदीश है, अदेशल अलेख है, अभेशल अभेक है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुभाष है, के अजब स्वरूप है।

गुणगण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज।

भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब भूते अजायब गनी में हरियं करियं करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए श्राव सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार धन सुध सुधायक सन समूह अवनिवगति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूत नात बिचारे इते पै तो कांपे अंधकुणा के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पविख भवान के पुवत कौन कने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्ज

0: नहात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख लो मोए राख।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ पेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, नंकार कार चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो संकर्या कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, दिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर

आया अगन सावी को जाई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

भोजन भाव करे, तन मन संपे कंत को, तो नानक भोग करे। पौ सिगार तंबोल रस, भोजन भाव करे।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਨਾਇਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵੋਂ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਬਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਨ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਮਈ ਇਨਾਇਤਮਈ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਰਮਤਮਈ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਗਾਇਨ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਏ ਬਾਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟ ਜਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ਤਰ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ 788 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। इस विच महाराज जी ने मूल रूप च तीन विचार साडी चोली च पाए ने। एक विचार है परमात्मा दे भै विच रहना, दूसरा विचार है उसके प्रेम विच रहना, भै विच रहना ते प्रेम च रहना, और तीसरा महान विचार सतगुरु जी ने चोली च पाया कि पाओ ते प्रेम उसे दा ही है, पाओ पाओ सब तिस दा, जो सच वरतै संसार जो सदीवी है कदी नाश नहीं होंदा। ते संसार दे हर जीव विच हर जर्रे जर्रे विच विराजमान है। बड़े गहरे विचार सतगुरु जी ने साडी चोली च पाए हैं। फिर महाराज इन्हां बोलां दी वजाहत करदे होया फरमान करदे ने कि बहुत सारे मनुख ऐसे ने जिन्हां नूं देखिया लगता है कि बड़े धार्मिक हैं, बड़े जुड़े हुए लोग हैं, इन्हां विच ते परमात्मा विच कोई फर्क ही नहीं रह गया। उन्होंने इस तरह का लिबास बनाया, मत्थे ते खास तरह का तिलक लगाया, खास तरह का कुल्ला पहनिया, खास तरह के बस्त्र पाए, ते उन्होंने अपने आप नूं संसार विच धार्मिक दिखाना प्रारंभ कर दिता। एक एक बोल नूं बड़े ध्यान नाल सरवण करना ताकि सतगुरु जी दे ए बोल साडी समझ विच आवण, ते साडी समझ वड्डी होवे ते इन्हां बोलां दा भाव साडे मन विच वस सके। इत्थे मैं गुजारिश करना चाहुंदा हां कि धार्मिक दिखाई पै जाना, एक तरह नाल धार्मिक साज सज्जा बना लैणा, इस विच कोई बहुत वड्डी कालना दी लोड़ नहीं है, कोई बहुत वड्डे जप तप दी लोड़ नहीं है, कोई बहुत वड्डी मेहनत ते मुशक्कत दी लोड़ नहीं है। बड़ा सौखा है, दो तीन घंटियां विच मनुख बहुत वड्डा ब्रह्म ज्ञानी दिखाई पैण लग पाएगा। मैं दो तीन पहरां च नहीं आख्या, दो तीन दिनां च भी नहीं आख्या, दो तीन घंटियां विच ही मनुख बहुत वड्डा संत दिखाई पाएगा। बस करना की है, बाजार जाना है, खास तरह का लिबास ले लेना, टेलर मास्टर कोलों सिलवाई करवा लेना ते गल च पा लेना, ते लोकां नूं लगना भी इस वर्गा धार्मिक बंदा होर कोई। धार्मिक दिखाई पै जाना सिर्फ लिबास है, लिबास तो बिना होर कुछ नहीं है, पर सच जानना धार्मिक हो जाना, वाकई हिरदा धर्म नाल सच्चे नियम नाल जुड़ जाना, एक बहुत वड्डा अभ्यास है। इस विच कई जन्म भी लग सकते, दो तीन जन्मां दी भी गल नहीं, दो तीन घंटिया की भी गल नहीं है, दो तीन दिना साल की भी गल नहीं है, या फिर गुरु की मेहर हो जाए तो गुरु एक पल विच बना देवे, गुरु कोले वड्याई। इसलिए महाराज कहंदे ने गुरु अमरदास पातशाह पुरखा दिखावे दी दुनिया विच ना जा। बड़े सोहने बोल ने सतगुरु पातशाह जी दे, जिन्हां विच आपने गहरा ये बचन साडी चोली च पाया। आख्या पुरखा कामण तो सिंगार कर जा पहला कंत मनाए, ऐ जीव रूपी स्त्री ए धार्मिक सिंगार ता कर, पहला अपने कंत परमात्मा नू राजी कर लै, ओ तेरे ते प्रसन्न हो जाए, उसकी प्रसन्नता तेरे ते बन जाए। ए अपने आप नू महाराज ने इते जीव रूपी स्त्री विच बयान किया है कि पहले पार ब्रह्म परमेश्वर जो पति है, जो जगत का मालक है, उस नाल तेरा हिरदा जुड़ जाए, तेरे हिरदे चो वस जाए, तेरे नाल उसकी सहमति बन जाए, ते फिर तेरा जिहो जिहा भी जीवन है उस द्वारा सिंगारिया होया। कामण तां सिंगार कर, जब पहले कंत मनाए पहले उस पार ब्रह्म परमेश्वर नू तो सिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत सेजै कंत ना आवई एवं बिरथा जाए मता ऐसा ना होवे के तेरे हिरदे दी सेज विच परमात्मा दा आउणा ना होवे विराजना ना होवे ओ आके बैठे ही ना ते तेरा एक कीता होया आडंबर सारा ही व्यर्थ चला जाए ते लाभ कोई ना। बड़े गहरे बोल ने सतगुरु पातशाह जी दे। बहुत सारे लोग संसार च दिखाई पैंदे जब जगत गुरुदेव गुरु नानक पातशाह पूर्व देश दी यात्रा च गए तो एक नूर शाह नाम दा जादूगर सी। नूर शाह जादूगरनी जिसनु आखदे उसने खास तरह दा लिबास बनाया होया से आख्या परमात्मा मेरे कोल आंदा है मेरे कोल बैठदा एक मिकता प्रदान करदा है ते लोग दूरों दूरों उस दे दर्शन वास्ते आउण लग पैंदे। बड़ा मेला लगदा बड़ा वड्डा इकट्ठ हुंदा लोकी तरह तरह दीआं भेटावां अर्पण करदे कोई उस ते सवाल ना करदा ते भरमण करदिआं करदिआं जगत गुरु नानक देव महाराज उस थां ते पहुंचदे आखण लगे ओ नूर शाह कदे उस शाह को डिठा है ता गुरु नानक देव महाराज जी दे सामने उस कोलों झूठ ना बोलिया गया। आखण लगे मैं देखिया ता नहीं है बस लोक दिखावा है। महाराज कहण लगे फिर इस नाल कोई लाभ नहीं होंदा जिवें श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जिया दे अमृत लबरेज बोल हन फुरमान करदे ने कहने भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन। लोकी भेख देख के काबू आ जाते थानू बड़े ऐसे मिल जाणगे भारत भूमि ते तां परमात्मा दी बड़ी मेहरबानी है। इत्थे हजारां ही लोग हन जिन्हां ने अपने नाम नूं भगवान दे तौर ते रजिस्टर्ड करवाया होया सरकार दे घर विच। कोई अपने आप नूं भगवान अखवांदा है रब अखवांदा है कोई अवतार अखवांदा है ते कोई ते ऐसा महान पद्धर पुरुष होया जेड़ा अपने आप नूं राम भी रहीम भी ते गुरु दा मित्र भी अखवांदा। भई मैं गुरु मित्र हां सब दा ते बाद च पता चलदा है भेख तो सिवाय होर कुछ भी नहीं। इस तरह दे बहुत सारे अपने आप नूं भगवान अखवाण वाले अपने आप नूं परमात्मा अखवाण वाले बहुत सारे तां खत्म हो गए मर गए मुक गए ते बहुत सारे भैड़े इल्जामां तहत जेलां विच बैठे हुए। लोग बड़े आउंदे सन बड़े मत्थे टेकदे सन ते बड़े धन पदार्थां दे अंबार लगे रहिंदे सन पर असलीयत जद खुलदी है ते फिर पता चलदा। इधर उड़ीसा विच भुवनेश्वर नाम दा एक स्थान है उत्थे गुरु नानक देव जी दे चरण पए नाल ही जगन्नाथ पुरी पावन स्थान है जिथे सतगुरु जी ने पावन बोल उचारे गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਰਤੀ ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੀਏ ਆਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਕਦੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। महाराज जी जद पहुंचे तो फिर बहुत सारे लोग सतगुरु जी वल नू खिचे आए, जिवें जलदे हुए चिराग ते मैं अर्ज करा परवाने आ जांदे ने। इस तरह गुरु नानक दे चरण जिथे जिथे पए उत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ हो जांदा रहा। दर्शन देखण कारणे सगली उल्ट पई लोकाई, इंज लगदा सी जिवें सारी धरती दे लोग गुरु नानक देव महाराज वल आ नहीं रहे, बल्कि धरती टेढ़ी हो गई है ते लोग रिड़दे रिड़दे महाराज वल आपे ही आ रहे। सगली उल्ट पई लोकाई, अचल बटाले भी इस तरह होया, नाल ही है साडे, इथों कोई 30 किलोमीटर दूर होवेगा जिथे गुरु नानक देव महाराज ने शिवरात्रि दे मेले ते चरण पाए सन। नाल ही अचल साहेब बटाले दे कोल महाराज जी दा सोहरिया दा नगर भी है ते इत्थे वड्डे कौतक भी वरत। बड़ा लोगां दा इकट्ठ सी, बड़ी भीड़ सी उस जोगी कोल जांदी, पर सारे जद गुरु नानक देव जी दा शब्द गूंजिया, महाराज जी दे इस महान शब्द दी गुंजार नू भाई साहब भाई गुरदास जी ने बयानिया, दित्ती बांग नमाज पढ़ सुन समान हुआ जहाना। महाराज ने जद पार ब्रह्म परमेश्वर दी बाणी नू गाया ते फिर सारा जहान मनो समाधि लीन हो, गुरु नानक देव जी दे कोल सब आउन लग पए। वो जिहड़ा कनपाटा जोगी सी उहदा मठ खाली हो, एक भी ना जाए, दो चार चेले सन, एक नू पुछया होया की है, आखण लगे नानक तपा आया है गुरु नानक देव महाराज नू। ओ नानक तपा कहंदे सन, नानक तपा आया है ते तुहाडे खास चार चेलियां चो तीन भी उत्थे ही चले गए ने ते मैं भी उत्थे ही जांदा पिया। ये बड़ा क्रोधित होया, सा संगत जे जाप करदिया भी असी क्रोधित होंदे, धार्मिक कर्म कांड करदिया भी असी क्रोधित होंदे आ, ते अंदर बदले दी भावना जागदी है, तो फिर समझ लेना हाले दिखावे दा धर्म है, हाले अपनावे दा नहीं बन सकता, हाले अंदर वस्या नहीं है, बाहर जरूर दिखिया, हाले अंदर विराजिया नहीं है। ये आखण लगा मैं भी जाके देखदा, बड़े क्रोध नाल भरे। सतगुरु नानक देव महाराज जी दी जद हाजरी च पहुंचया ते वो अस्थान सचखंड अस्थान बनिया होया। इस दे कोल एक वन नाम दे दरखत दी एक टहनी लाठी दे रूप जिसने रखी हुई, जद महाराज जी नूं देखिया ते वो शब्द गा रहे। महाराज जी दे जीवन दी यही बरकत है, अमृत वेले आवाज देंदे ने, अहो वह मरदानिया रबाब छेड़ काई सिफत खुदाए की करी है, बाणी आई है पार ब्रह्म परमेश्वर दी गाई। गुरु नानक देव महाराज बाणी गाउंदे ने, उन्हां नूं बाणी उतरदी है, अलहाम हुंदा है, नाजल हुंदी है, आकाश बाणी हुंदी है, ते भाई मरदाना कौन है? भाई मरदाना संगीत दा पीड़ा साहिब है, सिंघासन है, संगीत दा आसन है, जिस आसन ते ओ बाणी आके विराजती है, जो गुरु नानक देव साहिब जी दे पावन कंठ तो बोल उचरदे हन, प्रगट हुंदे ने, ते जो राग उना दी कंठ चो बरकत बन के प्रगट हुंदा है, मिठास बरसदी है, संगीत बरसदा है, भाई मरदाने जी दे पोटियां चो भी उही राग निकलदा है, एक मिकता बन जांदी है, ते गुरु नानक देव महाराज बाणी गा रहे। वैसे साध संगत गुरु दे बोलन नालों ज्यादा मिठास भरिया बचन होर हो नहीं कोई सकदा, रूहे जमीन ते होर कोई इस तरह दा अगमी रसदायक बचन दिखाई नहीं पैंदा जिहो जी गुरु नानक देव महाराज जी दी बाणी। महानता वाले बचन हन, भाई साहब भाई नंद लाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बचना दी मिठास दा जिक्र किया। मेरा मन करदा मैं थानू ए भी सुनावा, नाल लगदा होया पर पहले मन करदा है जितने भागशाली हाजरीन हाजरी भर रहे हो पावे ते श्री मंजी साहब गुरु महाराज दे दरबार च हाजरी भर रहे हो या अपने ड्राइंग रूम च देश विदेश च बैठे अपने परिवार च गुरु महाराज दी हाजरी भर रहे हो एक वारी सारे अपनी रसना ते सतगुरु जी दे चरण पौंदिया होया आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के उच्ची आवाज विच आखो जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। भाई नंद लाल जी का बचन बड़ा कीमती आखदे ने सिकमे दहाने तंग तो तुंगे शकर न बासन। हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थोड़ा जो एक एक बचन है ओ मिश्री दे वड्डे बोरे वर्गा है जिवें वड्डा बोरा मिश्री नाल भरिया होवे इस तरह थोड़ा एक एक बचन मिठास रखदा है रस रखदा है उस विच अमृत बरसदा है उस विचों

आज मेरी मजबूरी है, ये मिसाल तुहाडे बचना लई दित्ती नहीं जा सकती, ये खूब तर नहीं, ये सोहनी मिसाल नहीं है, पर मैं की करा, एक आम मनुख हां, समझ आम है, बोल आम ने, इसलिए मैं ये जड़ी मिसाल दे रहा, अपनी बुद्धि मुताबिक आम ही मिसाल है, ये मिसल रा के गुप्तम, ये खूब तर न बासद, महाराज कोई वड्डा मिसरी दा 100 बोरा ले आवे, थोड़ा एक बचन 100 बोरे नालों भी ज्यादा मिठास वाला है, 1000 बोरे नालों भी ज्यादा मिठास वाला है, कोई 1000 बोरा मिसरी दा ले आवे ते उसनू घोल के शरबत बनावे ते लोकां नू पिलावे, शरबत मुक जाएगा, मिठास मुक जाएगी, भांडे खाली हो जाएंगे, पर हे कलगिया वालिया, तेरे अमृत बचना दी जो अमृत मिठास है ना, ए जिन्ना चिर ब्रह्मांड रहेगा थोड़े बचना दी मिठास दा अनुभव करेगा, ए ब्रह्मांड मुक भी जाएगा, महाराज थोड़े बचना दी मिठास ता भी नहीं मुकेगी, महाराज जी दी मिठास तो सदके जांदिया होया तुसी जयकारा बुलाया, पर मेरा मन करदा एक वड्डा जयकारा सारी संगत मिला के मिलके एक वड्डा जयकारा गजाओ, सतगुरु फुरमान करदे ने, कदने बाणी उचरे साध जामे अम्यो चले चरने, ओ जद जुड़े हुए महापुरुख अपनी रसना तो गुरु दी बाणी पढ़दे ने ना, एक एक बचन अमृत दा सोमा होंदा है, अमृत दा झरना होंदा है, बरसदा है, इस तरह गुरु नानक बाणी गा रहे सन ते दूर तक बैठी हुई संगत जुड़ी बैठी आनंद दा अनुभव कर रही सी, ए बड़ा क्रोध नाल भरिया होया कन पाटा जो कि इस दे हाथ विच वण दा सोटा सी ते जोर नाल गुरु नानक देव जी दी पिठ दे प्रहार कीता, इस दृश्य नूं देखणा, महाराज ने उफणी कीती सी नहीं कीती ते कीर्तन विच जुड़े रहे, इहदा एक मतलब ए है कि जे मनुख गुरु साहब दिखा रहे ने, पुरखा जे तू नाम नाल जुड़िया रहे ना, गुरु दी बाणी नाल जुड़िया रहे, तेरे को बाणा भी होवे ते बाणी भी होवे ते फिर जे कोई हंकारी प्रहार भी करेगा ते दुख नहीं पहुंचा सके, कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा, उस नाल पीड़ा दा अनुभव तेनू नहीं होवेगा, तू जे जुड़िया होया होवे ते जे जुड़िया ही नहीं है ते एक गल ही बड़ा कष्ट पहुंचा देगी, एक शब्द ही मन नू चोटल कर देवेगा, महाराज अडोल कीर्तन कर दे रहे, दो घड़िया बाद या कुछ समय बाद जद महाराज ने कीर्तन नु समाप्त किया, समा होया ते उसने कड़कदे हुए बोलां च आख्या, ए नानक तपे तेरे ते मैं इतनी जोर दी लाठी नाल प्रहार किया, तेनू कोई असर नहीं होया, तेनू कोई पीड़ा नहीं हुई, ते गुरु नानक मुस्कुरा के आखण लगे, आओ योगी राज बैठो, कमाल दी गल, एक लाठियां बरसा रहा है, उस कोल सिर्फ धर्म दा लिबास है, अभ्यास नहीं, उदे कोल धर्म दा सिंगार ता है पर प्रभु दा प्यार नहीं है, इत्थे बाणी बाणा दोवे ने मुस्कुरा के आखण लगे, योगी राज आओ बैठो, आपां बैठ के विचार करदे आं साडे तन ते तुहाडी लाठी दा कोई असर तां नहीं होया, पर तुहाडी लाठी ते साडा जरूर असर होया, जद उस लाठी वल देखिया तां सा संगत उस विचों हरे पत्ते अंकुर दे पए सी, ओ सुक्की हुई लाठी हरी भरी हो गई सी, जोगी सुट के दौड़े आखण लगा, ये तो बड़ा होर ही कोई करदा मात वरत गई, कोई करिश्मा हो गया, भाई मरदाना जी ने उस लाठी नू गढ़ दिता सी, उस लाठी नू लकड़ी नू गढ़ दिता सी, ते गुरु नानक दी याद विच अज ओ दरखत

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अध्यात्म जगत से कुछ ज्ञान के मोती आपके लिए चुनकर लाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे परिवारों, रिश्तों, वर्क स्पेस और समाज में देखने को मिलती है। वह है दूसरों में कमियां देखना और एक दूसरे को नीचा दिखाना। कभी हम किसी की कमियां देखकर हंसते हैं, किसी किसी की असफलता का मजाक बनाते हैं, कभी किसी की आर्थिक स्थिति, उसके रंग रूप, उसकी शिक्षा, उसके काम या उसके विचारों को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार यह सब मजाक के नाम पर होता है, किंतु सामने वाले के हृदय पर गहरी चोट छोड़ जाता है। इस पर करते हैं विचार छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। हम स्वयं को बड़ा दिखाने के चक्कर में दूसरों को छोटा या नीचा दिखाने लगते हैं, जबकि हमें दूसरों की लकीर छोटी करनी हो तो उसे मिटाने की बजाय उसके साथ में स्वयं की एक और बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। इसी में समझदारी है, किंतु नहीं, हमें अपने भीतर कम और सामने वाले में अधिक कमियां दिखाई देती हैं। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। एक शिष्य हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता और उन्हें अपमानित करता, दूसरा सबका सम्मान करता। एक दिन गुरु ने पहले शिष्य से कहा, जंगल से एक सूखा पेड़ खोज कर लाओ। वह गया और तुरंत लेकर गुरु के पास आ गया। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य से कहा कि जंगल में जाओ, एक सूखा पेड़ लेकर आओ जिसमें कोई अच्छाई ना हो। वह बहुत देर बाद खाली हाथ लौटा और बोला, गुरुदेव, हर पेड़ में कोई ना कोई गुण है। कोई छाया देता है, कोई फल देता है, कोई लकड़ी देता है, कोई ईंधन देता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। जो केवल दोष देखता है वह अपमान करता है, जो गुण देखता है वह सम्मान देता है। याद रखिए, फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, ये अक्सर हमने सुना होगा। उसी प्रकार वास्तव में महान व्यक्ति विनम्र होता है। अहंकार व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे उसे अकेला कर देता है। इस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। मैं यूं गया यूं आया।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिरदा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में दैवी गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विनम्रता, अहंकार का अभाव, अहिंसा, क्षमा और सरलता मनुष्य के दिव्य गुण हैं। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही वास्तव में महान बनता है। अक्सर जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है उसके भीतर कहीं ना कहीं अहंकार या असुरक्षा की भावना छिपी होती है। वह स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा करने का प्रयास करता है, किंतु सच्चाई यह है कि दूसरों को छोटा करने से कोई बड़ा नहीं बनता। महाभारत में दुर्योधन ने बार बार पांडवों का अपमान किया, सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। अहंकार और अपमान की यही अग्नि अंततः महाभारत जैसे विनाश का कारण बनी। उसने पूरे वंश को संकट में डाल दिया, यहां तक कि पूरा वंश समाप्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण स्वयं तीनों लोकों के मालिक भगवान होकर भी अत्यंत विनम्र रहे। वे अर्जुन के सारथी बने, अपने भक्तों के सेवक बने। उन्होंने कभी अपने पद या शक्ति का अहंकार नहीं किया। चलिए आज हम एक संकल्प लें कि हम किसी को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाकर स्वयं आगे बढ़ेंगे। हम अपमान नहीं सम्मान की भाषा बोलेंगे, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहां प्रेम रहता है। जहां प्रेम होता है वहां भगवान का निवास होता है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
0: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
3: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
5: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
6: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू इत्थे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
7: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
8: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
9: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच। चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स लई याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tireforce.com.au।
10: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
0: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
0: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
3: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
5: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
6: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू इत्थे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
7: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कह रहे
4: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाटे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असि बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
4: पर टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या अज ही विजिट करो 104 कॉलिंस।